सुप्रभात अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 31 मई 2026 रविवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:20 पर। आज वर्ल्ड नो टबैको डे भी मनाया जा रहा है।

ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे मन के आंगन में कहां आऊं? उसमें तो तूने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बिठा रखा है। क्या तू ये गंदगी भरा आसन ही मुझे देगा, जिसके कारण इस मन को निर्मलता और पवनता हासिल होगी? इस साधन, इस विधि को अगर तू अपना लेगा तो ज्ञान का उजाला तेरे जीवन में आ जाएगा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओ, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का
2: सारे नु मेरी राम राम। हम सुन रहे रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं थारे साथ थारी रेडियो सखी नेहा दाकड़, अर्थारा स्वागत करूं हूं 90.0 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम में। मारा आज का कार्यक्रम आओ गांव चले। आज हम पहुंचे हैं राजापुर खेलन गांव में, जहां आज हम सरपंच से बात करांगे। तो राम राम सरपंच जी, आप अपने बारे में बताओ थोड़ा सा।
3: मेरा गाँव राजापुर और नाम राज सिंह है। मेरा गाँव पंजाब में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मोहाली है और तहसील डेराबसी है। और खिलन दो गांव इकट्ठे आए 1983 में। स्वर्गीय श्री डॉक्टर धर्म सिंह ने अपनी राजापुर की पंचायत अलग करा दी और जब से हमारी और खिलन की अलग ही पंचायत बन दी आ रही है। और मेरे वाला टर्न भी पूरा होने वाला है, 3 महीने बाकी रह रहे हैं। और हमारा गांव एक बहुत ही संतमय गाँव है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे नेचर के हैं सभी। और ये अम्बाला कैंट के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। अम्बाला कैंट का रेलवे स्टेशन बस स्टैंड ला लो, यहाँ से कोई 8-1 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। और पड़ता है हमारा गांव पंजाब में है, डिस्ट्रिक्ट मोहाली है। बस यही है गांव के बारे में, तो पहचान तो इतनी की है।
2: जिस तरह गांव के बारे में आपने बताया अभी कैंट के रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर आ, तो जिस तरह आपकी तहसील आ या आपका डाकखाना, तो मैं पंजाब में या हरियाणा में?
3: पंजाब में है जी सारा कुछ। हमारा खाना दाना तो हरियाणा से है, खाए कमाएंगे तो हम हरियाणा से। और जो सरकारी काम है वो पंजाब में है। पंजाब में तहसील पड़ती है डेराबसी, यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर। और मोहाली डिस्ट्रिक्ट है जो 60 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है। जो जिससे सभी गाँव वाले, एक मेरा ही गाँव नहीं है, आगे जोधपुर है, मल्लन है, अंटाला, सारंगपुर, ये काफ़ी गांव हैं, इस चीज़ से सारे ही परेशान हैं। क्योंकि छोटा सा भी काम होगा तो 35 किलोमीटर जाना है और इधर पड़ जाए मानो 8 किलोमीटर, तो सारे ही मतलब सारे ही 5-6 गांव को इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो सारे की यही मांग है हमारी कि हमारा अगर हो सके तो हम हरियाणा के साथ टच हो जाए, तो सारी चीज़ की हम लोग सहूलत हो जाएगी। जो भी हमारी जींस है या सौदा पत्ता घर का खरीदना तो हरियाणा से खरीदना, हम लोग सारी बार हम लोग हरियाणा में जाना। और सरकारी काम के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा 35 किलोमीटर जाने के लिए, जिसपे व्हीकल भी जरूरी है जाने के लिए, और फिर खर्चा भी ज़्यादा आएगा व्हीकल का और टाइम तो सारा दिन निकल ही जाएगा। यहाँ जो 1 घंटे का काम है वहाँ से सारा दिन लगता है। हमारी यही है सरकार से, मान लो सेंटर सरकार से यही मांग है। अभी हमारी सारे 5-6 से 10 गांव पड़ते हैं, अभी हरियाणा में आए और हमारा जीवन और भी ज़्यादा खुशहाल हो जाए, जिससे बस यही डिमांड है हमारे यहाँ से।
2: तो जिस तरह आपका गांव 7 किलोमीटर दूर पड़ा रेलवे स्टेशन से अम्बाले कैंट के, तो आप आने जाने में कितनी दिक्कत है? और जिस तरह आपका गाँव पंजाब में पड़ा, तो आप लोग क्या क्या दिक्कत का क्या सामना करना पड़ा?
3: हमारे गांव में सवेरे एक टाइम बस का है जिसमें कोई चला जाए ना चला जाए, उसके बाहर कोई साधन नहीं है। ना कोई पंजाब सरकार ने लगा रखा है, ना कोई हरियाणा सरकार ने लगा रखा है।
2: जैसे घर में मोटरसाइकिल तो सबके ही हुआ, और जिस तरह गाँव में बच्चे पढ़न जहां या फिर और बुजुर्ग नु जाना हुआ तो बस की सर्विस या ऑटो वगैरह हुआ जिस तरह, तो आप पंजाब में जिस तरह आपका गाँव पड़ा तो अम्बाले कैंट जाने में ज्यादा सुविधा, या फिर पंजाब में जिस तरह आपकी तहसील वगैरह जहाँ भी वहां जाने में ज्यादा सुविधा?
3: सुविधा तो अम्बाला कैंट जाने में नजदीक पड़ता है, पर सवारी वहां भी नहीं है। ऑटो की 1 घंटा वेट करनी पड़ेगी, 1.5 घंटा वेट करनी पड़ेगी, जब उसमें सवारियां पूरी होंगी तब चलेगा ऑटो वाला। और पंजाब में तो कोई बस भी नहीं लगी है, एक आधी कोई एक भी टाइम बस का नहीं है कोई, एक भी हम चले जाएं वहां तो अपने व्हीकल से जाएगा, जो भी जाएगा 1500-2000 रुपये खर्च के जाया जाएगा।
2: तो जिस तरह आपने बताया अभी मारा गो पंजाब में पड़ा जबकि लग रहा है हरियाणा के पास आ, तो जिस तरह आपके तहसील और आपका डाकखाना और डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यो आपकी पंजाब में पड़ा।
3: पंजाब में पड़ा।
2: तो आपकी तहसील कौन सी जगह?
3: डेरा बसी जी।
2: और डिस्ट्रिक्ट आपकी?
3: मोहाली है जी। डेरा बसी पड़ जा लगभग 35 किलोमीटर और मोहाली 55 किलोमीटर।
2: तो आपके वास्ता पंजाब सरकार ने क्या क्या सुविधा दे रखी है, थोड़ा आप उसके बारे में भी हमारे श्रोता बतावा।
3: पंजाब सरकार ने तो फिलहाल तो कोई ट्रांसपोर्ट की तो कोई सुविधा नहीं है जी, बहुत ही दिक्कत है। पहली बात तो हमारे बच्चे इधर पढ़ने वास्ते जंदे नहीं है तकरीबन, क्योंकि स्कूल जा जो वो भी 30 किलोमीटर से पहला नहीं पढ़ रहा कोई भी, और जो मान ले सरकारी काम है उसमें मजबूरी में जाना ही पड़ा। कोई अपने घर आते 2000 रुपये खर्च कर जाओ, 2500 खर्चो, जो मर्जी करो, और कोई पंजाब सरकार ने ऐसी कोई सुविधा नहीं। सुविधा जो बुढ़ापा पेंशन उनमें भी मारी गलो एक किस्म से भेदभाव हो रहा। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 2700 रुपये होगी, यहाँ जी 1500 रुपये, वो भी टाइम पर नहीं मिलती। मान लो जो भी विधवा वगैरह सारी पेंशन में ही फर्क है, और जो अपना एग्रीकल्चर का मान लो सब्सिडी वगैरह देती है सरकार, उसमें भी फर्क है। पंजाब में तो नाम मात्र ही है सब्सिडी जिम्मेदार के लिए, सरकार पंजाब में हरियाणा में बहुत फर्क है अभी।
2: तो मतलब आप लोग बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी गाँव पंजाब में गया। तो जिस तरह यहाँ के बच्चे या गांव के बच्चे जिस तरह स्कूल में तो आसपास चलिए ही चले जाएं, तो कॉलेज में पढ़ने वास्ते उन्होंने अंबाला जाना पड़ा या कहीं डेरा बसी जाना पड़ा, तो कॉलेज में जाने वास्ते उनके पास कितनी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की, बस सर्विस कितनी, ऑटो सर्विस कितनी है कॉलेज में जाने वास्ते?
3: गाँव से ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं, एक सवेरे एक टाइम बस आती है हरियाणा रोडवेज की, उसमें ही कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ जो रह जाते हैं वे अपने व्हीकल से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, और कोई साधन नहीं है। पंजाब सरकार का तो एक कोई भी नहीं, मतलब एक व्हीकल भी नहीं है यहाँ भी यहाँ कोई आता हो, और पंजाब में ना ही बच्चे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से कॉलेज 35 किलोमीटर है। बच्चा नहीं चाहता अभी, एक कॉलेज तो पढ़ रहा सुनो 8 किलोमीटर, एक पढ़ रहा 35 किलोमीटर, वो 35 किलोमीटर क्यों जाएगा? तो तकरीबन 95% बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं अम्बाला कैंट में अपने, और हरियाणा सरकार को तो हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारा इंसेदारी तो हमारी पंजाब में है। हरियाणा को तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अभी कोई ट्रांसपोर्ट मतलब 2 बजे या 1 बजे वापस गांव के लिए भी लगा दे, जैसे सवेरे 1 है तो उसमें हरियाणा के भी कई गांव पड़ते हैं, ये बात नहीं है। पहले हम जाके भी आए 1-2 जगह, आश्वासन दिया है, चलो भाई मतलब आम बंदा आवाज़ ही उठा सकता है, सरकार के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अब भी हमारी तो एक रिक्वेस्ट ही है सरकार से, ज़्यादातर हरियाणा सरकार से ही करते हैं हम, क्योंकि यहीं हमारा सारा लेन देन है और सारा कुछ यहीं से है। अभी हमारे बच्चों के लिए 2-3 टाइम और बस लगा दे तो थोड़ी सी इनको सुविधा हो जाएगी।
2: तो आपने जिस तरह बताया अभी मानू बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो आप इस बारे में सरकार से क्या निवेदन करना चाहा, अभी सरकार हमारी किस प्रकार से सहायता कर सका?
3: देखो हम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, यहाँ से बॉर्डर पे हमारा गाँव है, और हम तो अपनी पंजाब सरकार से भी रिक्वेस्ट ही करते हैं और हरियाणा से भी और केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने नहीं कोई अपना ट्रांसपोर्ट का यहाँ से कोई सिस्टम कर रखा कि कोई जिससे बच्चे स्कूल जा सका थोड़ा सा, मतलब जब बच्चे पढ़ाएंगे यदि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा पंजाब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा एरिया कहाँ तक है, और उनको उनका फर्ज भी है और हमारी मांग भी है अगर ये कम से कम जहाँ तक उसका एरिया पड़ता है वहाँ तक बस या कोई मिनी बस तो ऐसा कुछ हो जाए जहाँ से जैस का बंदा आसानी से कॉलेज अपना जो भी कचहरी का काम है, और हरियाणा से भी यही प्रार्थना करते हैं हरियाणा सरकार से कि कोई मतलब 2-3 टाइम बस और लगा दे, और इस जो रूट हमारा गाँव जिस रूट पर पड़ता है इस पर आगे हरियाणा के गाँव भी काफ़ी हैं, उन बच्चों को भी लाभ होगा, हरियाणा को भी, हमारा तो इसमें फायदा है ही है, हरियाणा का भी फायदा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है हमारी हमारे पूरे एरिए की केंद्र सरकार से ये है कि जो ये गांव है जिनके 3 पासे हरियाणा लगता है, हमारी बोली भी हरियाणा की है, सारा लेन देन जो भी हमारा बैंक का ला लो या अपनी फसल का ला लो सारा कुछ हरियाणा में है, हम सिर्फ पंजाब में सरकारी काम के लिए जाते हैं। इस करका केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि जो हमारे 5-10 गांव जो से हरियाणा के पास पड़ रहे हैं पास क्या है, बिल्कुल अंदर बढ़ के हरियाणा गए तो 6 गांव तो इनको अगर हरियाणा में ले लिया जाए तो हमारा जीवन और मतलब सुखमय हो जाएगा। यही सारे गांव की भी मतलब पूरे एरिया की डिमांड है हमारी केंद्र से सरकार से, अभी हमें हरियाणा के साथ लिया जाए।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, सरकार आपकी आवाज सुनागी और आपकी मदद करागी। आज हम बात करांगे गांव के जीवन के बारे में और मार आज का कार्यक्रम आओ गांव चले, तो गांव के बारे में और ज्यादा जानने वास्ते आज हम पहुंचे हैं गांव रजापरमा, जहां हम बात करांगे राम किशन जी ते और जिनकी उम्र हो रही 70 वर्ष। राम राम ताऊ।
4: राम राम जी।
2: और ताऊ ठीक ठाक?
4: ठीक सही।
2: तो ताऊ मैं आज तेरे यूं पूछना चाहूं भी जोन सा आज का गांव का रहन सहन है और जोन से हमारे पहला के टाइम मोए कराते उनमें कितना फर्क पड़ा?
4: हमारे टाइम में तो बेटा जब हम स्कूल में जाया करते थे साइकिल भी प्राप्त नहीं होती थी हमारे, हम पैदल जाया करते थे और यहाँ से गांव सरसेड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, हम वहाँ पर पैदल जाके स्कूल में पढ़ाई करते थे क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक का स्कूल था। इसके बाद हम 5वीं से 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक हमने कहाँ पढ़ा है, सरसेड़ी में। सरसेड़ी में 10वीं क्लास जाने के बाद उससे आगे स्कूल नहीं था, फिर हमें अम्बाला कैंट पढ़ना पड़ा।
2: तो ताऊ मतलब तने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करी हुई?
4: मैं 10+2 तक पढ़ा हूँ।
2: ठीक बात आऊ, तो 12वीं के बाद तने फिर कॉलेज की पढ़ाई नहीं शुरू करी?
4: ना बेटे, घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं कॉलेज में पढ़ सकता, ये 12वीं भी बहुत मुश्किल से की है, इतनी घर में गुंजाइश नहीं थी। ये गांव बिल्कुल, यहाँ हर एक मकान कच्चे थे, पैसे की बहुत दिक्कत थी, फसलें नदी बर्बाद कर देती थी, यहाँ तो बहुत मुश्किल जीवन व्यतीत किया हमने अपने टाइम में। आज के टाइम में बहुत सहूलियत है, गाँव में सड़कें भी बन गई हैं, पक्के मकान भी बन गए हैं, उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क है।
2: ठीक बात ताऊ, तो ताऊ तन्ने अपने बारे में बता दिया अभी गाँव के माहौल में कितना फर्क पड़ा, तो इस माहौल के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता हम एक और ताऊ से बात करांगे। राम राम ताऊ। तो ताऊ आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी हो रही है?
5: मेरी उम्र 74 साल, पूर्णचंद मेरा नाम है।
2: ठीक बात ताऊ, तो ताऊ जिस तरह तेरी उम्र 74 साल हो रही तो तन्ने बहुत पिछला टाइम भी देखा और जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा यो भी देखा, तो ताऊ मैं तेरे यू ही पूछना चाहूं भी तन्ने अपनी जिंदगी में कितना फर्क देखा, भी पहला तेरी जिंदगी कैसी थी और आजकल के मारे न्याणे की जिंदगी में कितना फर्क देख रहा, तो तन्नू वह टाइम अच्छा लगा था आकी वो टाइम बढ़िया लग रहा?
5: टाइम तो वह भी अच्छा था बेटे, यही अच्छा थोड़ा हर चीज तो मिल जा, पहले तो कोई समान इतना मिला था, कोई बहुत दिक्कत थी, मतलब रेते में जाना, रेते में आना, पानी में चलना सारा दिन, वही नहीं बताऊँ और क्या बेटे, इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं था।
2: ठीक बात आऊ, तो रहन सहन के बारे में थोड़ा सा बताओ अगर श्रोता नु भी, तो खाने पीने का किस तरह बदल गया, हमारा पहनावा कितना बदल गया, अरे कितनी टेक्नोलॉजी आएगी इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। आगा
5: बहुत ज्यादा ही बद गई तो बेटे, पहला कहा कपड़ा भी नहीं इतना मिला था, क्या एक कुर्ता तो थी मिल गई, 1-6 महीने वही आदमी पहन रहा, पैर में जूती नहीं मिला थी, कहीं जहाँ देता तेरे भर के भाई किसी की मांग का जाना ये काम हुआ थे बेटे, यहाँ से पैदल जाना सीधा बेब्याल को, ये हाल थे, कोई सवारी का साधन नहीं था, कोई नई बात है और कुछ नहीं बेटे, जो पढ़ाई लिखाई है बताई है वही है बस।
2: तो पहला यातायात के साधन बहुत कम हुआ थे और बुजुर्ग जोड़ से मारे पहले बंदे थे उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा था,
5: यहाँ यहाँ बैठे यहाँ तो पानी की टक्कर लगती थी नदी की, ऐसे पानी फैलता था इसके गांव के चारों ओर गिरता, ये सरसेड़ी परसेड़ी ये सब इधर अंटाड़ सब में पानी घूमता था, फसलें सब नष्ट हो जाती थी, खाने में कोई बहुत बहुत दिक्कत आती थी।
2: राम किशन ताऊ जी आपते पूछना चाहूँ भी जोन सा आपका गाँव राजा पर इसमें क्या खास बात अभी और गाँव ते अलग?
4: ऐसा जी, गाँव रजापुर जो है बिल्कुल छोटा सा गाँव है, बहुत अच्छे आदमी इसमें, कोई चोरी नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, ये शरीफों का गांव है।
2: ठीक बात, तो मतलब थारा गांव शरीफा के गांव के नाम ते बजा?
4: बिल्कुल, रजापुर है ये, यहाँ पर पहले 2 आदमी होते थे, एक राजू एक खेलू, राजू ने रजापुर बसाई और खेलू ने खेलन बसाई है, गांव दोनों एक ही हैं।
2: तो इस गांव का यो नाम इस कर का पड़ा था, राजू के नाम से पड़ा था। तो ताऊ मैं तेरे ते और न्यू पूछना चाहूँ जोन सा यो थारा गोवा राजा पर यो पंजाब मावा और हरियाणा थार ते 7-8 किलोमीटर दूर आ, तो इसके पीछे क्या कारण रहा भी यो पंजाब में लिया गया?
4: ये तो बेटे हमारी सोधी से पहले की बात है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, कागजों में पंजाब में शुरू से है ये गांव, ये तो बुजुर्ग जानते होने, लेकिन हमें हरियाणा में जितना फायदा है पंजाब से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। हरियाणा में हम जाएंगे, पढ़ाई हमारी हरियाणा में, नौकरी हमारी हरियाणा में, ना है यहाँ पर बसें मिलेगी कोई।

0: भी इतना बेनिफिट नहीं है। यहां से इस गांव से कम 1,000 बच्चा अंबाला कैंट ड्यूटी पे जाता है प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ कोई सहूलियत नहीं, ना हमारे को कोई नौकरी देता है पंजाब में, ना हमें कोई उनकी सहूलियत है। हरियाणा में ज्यादा हमारे बच्चे हरियाणा में ज्यादा नौकरी कर रहे हैं जबकि पंजाब में नहीं कर रहे।
1: ठीक बात बताओ, तो मतलब सारे काम हरियाणा में ही है, कॉलेज ले लियो, स्कूल ले लियो।
0: ज्यादातर हमारे काम हरियाणा के अंदर ही मिलेंगे, पंजाब में तो ये नाम मात्र कहे, हम नाम है कि हम पंजाब में रहते हैं।
1: ठीक बात बताओ, तो मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूंगी भी, जोन सी मारी पंचायत हो आ, इसके जोन से पहला के फैसले होए कराते और जोन से इबने इब पंचायत चल रही इसके फैसले, इनमें कितना फर्क पड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
0: पहले जो पंचायतें थी हमारी, तकरीबन ज्यादातर किसी की लड़ाई होगी झगड़ा हो गया फैसला यही हो जाता था। ये डॉक्टर धर्म सिंह के टाइम की बात है, उस टाइम यहाँ के सरपंच थे राजापुर के। लेकिन आज के टाइम में हरेक आदमी के अंदर आग इतनी बढ़ गई है कि वो हरेक आदमी थाने की तरफ भागता है। तो अब तो थाने में जाना पड़ेगा और थाना पड़ेगा यहाँ से दूर। पहले लारडू थाना था हमारा, अब हंडेसरे में पड़ता है। तो पहले में और अब में तो बहुत फर्क है। पहले चार आदमी इकट्ठे होके पंचायत के आपस में यहीं पर फैसला कर देते थे, आजकल कोई किसी की मानता नहीं। सीधा थोड़ी सी बात हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, सीधा सरपंच को भी नहीं पूछेगा, वो पहले थाने में पहुंचेगा। आज का टाइम ये है।
1: तो तन्नू अपना वही टाइम पसंद आ, तो नहीं वो टाइम ठीक लगा?
0: बेटे हमारा टाइम तो वो भी ठीक था, लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से टाइम ये भी ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी सहूलतें अब हो रही है। हम तो बरसात का टाइम आता था, कोठे पे गारा लगाने के लिए परेशान हो जाते थे, किसी का कोला गिरता था, कच्ची छतें थी, डंडे डार रखे थे छतों पे, कड़िए के मकान थे। और आज एक भी मकान ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कच्चा है, हर एक का मकान पक्का मिलेगा, हर एक के घर में फर्श मिलेगा। हाँ उस टाइम में ये था, कोई गरीब आदमी है उसके घर में दूध नहीं है, पड़ोसी से मिल जाता था। अब तो जिसके घर में खुद दूध है वो भी दूध नहीं पी सकता, वो डोलू वाला ले जाता है। तो टाइम तो वो भी अच्छा था, जनरेशन के हिसाब से ये भी अच्छा है।
1: तो ताऊ, तो आज के मारे जोन से युवा अपने बालक है न्याणे, उन्हू क्या कहना चाहगा भी जिस तरह गलत आदत में भी पढ़ रहे बच्चे और अपना पढ़ाई पर भी नहीं ध्यान दे दे, तो उन्हू क्या संदेश देना चाहा, तो भी अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और किस मुकाम तक पहुंचना चाहिए?
0: बेटे हमारा टाइम ऐसा था, अगर किसी अपने बुजुर्ग के अलावा किसी और बुजुर्ग ने भी डांट दिया ना हमारे को, तब भी हम बोलते नहीं थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अपने बच्चे को हम खुद नहीं डांट सकते। पहले क्या था हमारे टाइम में, अगर पड़ोसी ने भी डांट दिया हम सीधे उनसे डर के भाग जाते थे। अब किसके बच्चे कहना मानते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ, तन्ने जानकारी दी और तो आज के युवा नु संदेश दे रहा भी अपने उसी टाइम पर चलना चाहिए जिस तरह हमारे पहला टाइम था, अपना कहना मान्य कराते ताऊ चाचे का बहुत डर होए कराता उस टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक युवा जुड़ रहे, हम युवा के साथ बात करेंगे कि युवाओं का जीवन कैसा है और वे अपनी जिंदगी किस तरह व्यतीत कर रहे। राम राम जी।
2: राम राम जी। नेहा जी, पहले तो आपको थैंक्स जो आप हमारे गांव में रेडियो के माध्यम से यहां तक आए। और मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और मैं गांव रजापुर पोस्ट ऑफिस केलन डिस्ट्रिक्ट मोहाली तहसील डेराबसी से रहने वाला हूं।
1: तो प्रवीण जी, जिस तरह आप एक युवा, तो मैं आज आपसे युवाओं के बारे में ही जानना चाहूँ भी जोन से मारे युवा उनका जीवन कैसा है और उन्होंने कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा।
2: देखो जी नेहा जी, ये तो अलग अलग स्टेप होते हैं, युवाओं के अनुसार उसकी कैटेगरी, उसके परिवार के अनुसार वो डिप्लोप होती है। जैसे एक परिवार में पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो 80% लोग पढ़े लिखे होंगे। अगर कल्चर पहली बैकग्राउंड खराब है तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने में समय लगेगा। और अगर मैं बात करूँ युवाओं की, हमारे गाँव में 80% युवाओं बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन की तरफ जाते हैं। और एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, हम पंजाब में एक 10वीं और 12वीं का स्कूल है, उसके बाद सारी एजुकेशन हम हरियाणा से डिप्लोम करते हैं। और एजुकेशन के बाद अगर बच्चा ग्रोथ करेगा, नौकरी पैसा जो भी लेगा वो भी 90% हरियाणा में लेंगे, या वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। हम 80-90% प्राइवेट में करेंगे और वो भी मैक्सिमम हरियाणा में करेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, हमारे गाँव से जो डेराबसी कॉलेज है, और कोई आसपास पंजाब का कॉलेज नहीं होगा डेराबसी, जो हमारे से 35 किलोमीटर दूर है, अगर यही बात हम हरियाणा से बात करेंगे तो हमारे से 7 किलोमीटर दूर SD कॉलेज है।

0: एक कॉलेज नहीं, चार कॉलेज हैं। इवन जो मेरी, जैसे बात करूंगा, छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, माता जी, जो हमारी सिस्टर बुआ जी हैं, जो पढ़ नहीं पाई, वो भी हमारे से 10 किलोमीटर कॉलेज आ रहा है, अगल कॉलेज, वहाँ स्टडी होप कर लेती वो, अगर हमें सहूलियत मिलती।
1: तो मतलब आप यूं कहना चाह रहे भी पढ़ाई लिखाई मानू यातायात की सुविधा नहीं है, आने जाने में दिक्कत हुआ, और इसकी वजह से शिक्षा शायद कहीं ना कहीं कम रहेगी।
0: यस मैम, जो आपने कहा है तो 100% यही कारण है इसके पीछे, क्योंकि हम एजुकेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए तो बच्चे रेडी हैं, पर जो उसको आवाज आएगा, जो साधना 4 घंटे सर्वाइव करेगा, वो कैसे करेगा? ट्रांसपोर्ट की सुविधा ही नहीं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होने का कारण भी मैं बता देता हूँ आपको, हरियाणा पंजाब का उसको पास लेना पड़ेगा, जो 2 सरकार का गेट पास लगेगा, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट काफ़ी होती है, जिसके कारण कोई प्राइवेट भी उसमें बस की सुविधा नहीं दे पाएगा। अगर सिंगल होता तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कम लगेगा और जिसके कारण सुविधा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, लोकल है तो अपने पास किसी को गाड़ी है, किसी को बाइक है, वो अपनी साधन से जो मर्जी जाए, वो तो उसके पेरेंट्स के बदौलत तो बच्चे स्टडी कर रहे हैं।
1: तो आप सरकार से यूं ही कहना चाह भी मानो शिक्षा प्राप्त करने वास्ता साधन भी मिलने चाहिए और हमारे आसपास भी कोई कॉलेज होना चाहिए।
0: राइट मैम, सारे कॉलेज हैं, SD कॉलेज है, GMN कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आर्यागल कॉलेज है, DAV कॉलेज है, अग्रसेन कॉलेज है, 7 कॉलेज गिनवा दिए मैंने 8 किलोमीटर के अंदर, और पंजाब के अंदर एक कॉलेज है डेराबसी, 35 किलोमीटर के दूर, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? अब दोबारा आओ प्राइवेट सेक्टर की बात, अगर मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मुझे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ से मेरे 6 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ 400 कंपनी है, कोई गैस की, कोई लोहे की, कोई साइंस की, तो मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी, और मैं अपने पैदल भी जा सकता हूँ अगर घर से कमजोर हूँ, और उसके बाद 2 हज़ार की साइकिल लेके भी जा सकता हूँ। बट पंजाब सरकार में मैं नौकरी कहाँ करूँगा? 40 किलोमीटर दूर डेराबसी से इंडस्ट्री एरिया लगता है फेस पे, ट्रिब्यून चौक पे, और यहाँ से वो 60 किलोमीटर दूर, मुझे आने जाने का बताओ कैसे करूँगा मैं? देखो,
1: तो आपकी सरकार ते क्या मांग, आप क्या गुहार लगाना चाहा सरकार नु?
0: मैं तो दोनों ऑप्शन बता दिए आवाज़ के जरिए, आपके रेडियो के जरिए भी। पहला ऑप्शन ये, या मुझे कॉलेज के पास ले जाओ मेरे बच्चों को, ताकि वो स्टडी कर लें, नहीं ले सकते मुझे ट्रांसफ़र कर दो, ताकि मैं एजुकेशन खुद ले लूं। दोनों सरकार के पास है, और केंद्र सरकार के हाथ जोड़ निवेदन करूंगा मैं कि जो ऑप्शन सही लगे वो मुझे एग्री होना चाहिए। अब थाने कचहरी की बात करूं, जैसे सरपंच साहब ने ओवरऑल कवर कर ही लिया मेरा, अगर मेरी DL या RC कोई भी चीज़ बनवानी पड़ेगी, मुझे डेराबसी जाना पड़ेगा जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, अगर यही चीज़ मुझे बनवाने के लिए ये 6 किलोमीटर दूर है, मुझे अपनी नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और एक दिन की 400 रुपये की दिहाड़ी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, मैं आसानी से जा सकता हूँ लंच टाइम में भी, क्योंकि मैं तो जॉब फैक्ट्री में कर रहा हूँ ना, कंपनी में एक छोटी सी जॉब, तो लंच टाइम का पीरियड होता है 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर मैं कचहरी में जा सकता हूँ, बट वहाँ मुझे 400 रुपये की दिहाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन सरकार के पास है देखो, और हम यहाँ बैठे हैं और आवाज़ केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ऑलमोस्ट पहुँच चुकी होगी। अगर मुझे गाँव के अंदर एक नाला बनवाना पड़ जाए, मेरी सरपंच सुनवाई ना करे, कोई सुनवाई न करे, मुझे MLA के पास जाना पड़ेगा ना, MLA कहाँ बैठता है मेरा? चंडीगढ़ डेराबसी, वो हमने आवाज़ आप तक पहुँचाई दी, कुछ ना कुछ निष्कर्ष अच्छा निकले और हम आगे बढ़ने की बात करें। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है भी, हम आगे जब बढ़ेंगे, जब देश हमारे साथ हमें आगे बढ़ाएगा और हमारी सरकार कोई निष्कर्ष निर्णय लेगी, हरियाणा ले या पंजाब ले, उसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं सर्वाइव करेंगे, अगले 70 साल भी आप आ सकते हैं। जब मैं 70 साल का हूँगा तो आप मुझे यही क्वेश्चन करना और मैं यही आंसर दूंगा, सेम जो मेरे बाबा जी ने दिया और जो सरपंच साहब ने दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने जो इतनी जानकारी दी और अपने बारे में बताया, और जो उनसे देश के युवा है उनके बारे में भी, मैं किस तरह आगे बढ़ सका।
0: देखो, देश तो आगे आज भी बढ़ रहा है और पहले भी बढ़ रहा था, बट हमारा गांव आगे पहले भी नहीं बढ़ रहा तो आज भी नहीं बढ़ रहा। पहले बड़ा होता तो बाबा जी बोलते बड़ा हुआ है, उसके बाद 20 साल 40 साल का गैप सरपंच साहब बोलते, और मैं भी सेम बोल रहा हूँ और मेरे आने वाले बच्चे भी यही क्वेश्चन करेंगे।
1: प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे ते बताया अभी मन यो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, तो इसका हम सरकार ते यही निवेदन करना चाहेंगे भी जो आपकी दिक्कतें हैं वह सरकार सुना, और जो भी सरकार उसका फैसला लेवागी तो आपके हक में होगा वो फैसला, और जिस तरह हम यहाँ आपके गो माए तो मारी है जोन सी आने की यहाँ वजह वह सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू नेहा जी, जो आपने कहा, देखो सफल तो जब भी होगी जब आवाज़ उठाएंगे, आपका नाम ही पहले आवाज़ है, आवाज़ उठेगी तो वो कुछ ना कुछ ले ही होगी डिसीजन, और ये निष्कर्ष मेरा नहीं है, विलेज रजापुर से मैं हूँ, मेरे पास वाला गांव खिलण है और उससे पास वाला अंटाड़ा, मालण, जोधगढ़, इवन सारंगपुर, ये सारे के सारे 6-7 गाँव हैं जो हरियाणा का बिलोंग करते हैं, और ये मेरा मतलब एक मेरी तकलीफ नहीं है, 7 गाँव की सेम यही है। आपकी आवाज उठेगी, आपकी आवाज की सुनवाई होगी, तो ये सात गांव आपका एहसान मंद रहेंगे पूरी लाइफ। हम भी अगली पीढ़ी को ये बोलेंगे भी आवाज से हमारे पास आया और हमारी आवाज केंद्र सरकार को गई और उसके बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी सेजल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पंजाब के एक गांव रजापुर में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहां के पंच और सरपंच, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस गांव के बारे में।
3: नमस्कार जी, मैं गांव रजापुर से और राज सिंह बोल रहे हैं, सरपंच तहसील डेरावासी जिला मोहाली।
2: सर, क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में अगर हम कृषि की बात करें तो इस समय कौन सी फसलें लग रही हैं और क्या कृषि के लिए तैयारी हो रही है?
3: मेरे गांव में जीरिया लगी हुई है अभी और चरी बाजरा है जो भैंसों के लिए और गन्ना है, बस मुख्य फसलें यही हैं ज़्यादा।
2: और जैसे फसलों के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो पानी की क्या सुविधाएँ हैं आपके गाँव में?
3: गाँव में किसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने ट्यूबवेल लगा रखे हैं और एक सरकारी बोर है, वो भी बिना देख रेख के ही चल रहा है रबरों से। बाकी कोई नहरी पानी नहीं है, जैसे पंजाब एक खुशहाल प्रदेश है, यहाँ से कोई नहरी पानी का कोई कभी देखे ही नहीं, किसी ने कभी नहरी पानी का होता है। और हमारे साथ तो यहाँ से बहुत ही सरकारों ने पहले से वो कह दें तो सौतेला व्यवहार कर रखा। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तो उनसे जो मर्जी को हाल हो, नहर भी आ जाएगी, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं।
2: जैसे अभी बारिश के मौसम में काफ़ी सारे गांव बारिश की वजह से प्रभावित हुए थे, तो उस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं आपके गांव को कोई दिक्कत आई?
3: बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, गाँव में पानी भी बढ़ा है और डांगरी नदी ने भी बहुत मतलब जो उपजाऊ जमीन थी उसका बहुत नुकसान कराया है। तकरीबन 40-50 साल बाद इतना पानी देखने को मिल रहा है, जो बुजुर्ग बोल रहे हैं इससे पहले तो कभी इतना पानी आया नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, चाहे इसको बात न हो चाहे आप काट भी दियो, मतलब कोई वो नहीं है, जो सच्चा है तो सच्चा है। इब की बार इस बरसात में जो अपना महेशनगर का पुल है उसने डुबोने का काम कराया है, जो अपना सरसेड़ी में पानी बढ़िया वो पुल के कारण बढ़िया है। आप मतलब सरकार को ये थोड़ा देखना चाहिए, उसके मैंने उसके नीचे जाके खुद देखा है, उसके 8 पिलर हैं, मतलब 8 दरवाजे ला लो आप, उन 8ों में से 4 बंद है और 4ों में का पानी निकलता है और 4 बंद है, तो पानी तो कहीं ना कहीं रास्ता चाहेगा। वहाँ पानी पूरा ना निकलने के कारण जो सुसेड़ी में पानी बढ़िया है वो सारा वहाँ की नाकाम भी है, वहाँ से निकासी बंद हो ही है, वो सरकार का काम है देखना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये मेरी मतलब आवाज़ ना काटा तो आप बढ़िया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि किसी ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं है। पूरी हमारी टेंट की अंबाड़े की इंडस्ट्री डूबी है इसी के कारण, 20-25 गांव जो डांगरी का तकरीबन 3 इंच से पानी इधर से गया, 1 इंच से पानी इधर गया।
2: तो इस वजह से गाँव के कितनी प्रतिशत जमीन और फसलें प्रभावित हुई?
3: मेरे गांव में तकरीबन 30% फसलें का नुकसान हुआ है और तकरीबन 15% जमीन खराब हुई है जो खेती के लायक रही नहीं है।
2: तो जैसे कि आपने अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया, तो इसके बाद आपको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला या सरकार की तरफ से कोई सुविधा प्राप्त करवाई गई है आपको?
3: नहीं, अभी तो कोई सरकार की तरफ से सुविधा नहीं कराई गई है। पहले भी जो अपनी कणक की फसल में बरसात हुई थी तब भी सरकार ने फार्म वगैरह भरवाए थे, कोई मुआवजा नहीं दिया और अब फिर सरकार ने फार्म भरवा रखे हैं जिसका नुकसान हुआ है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, आगे देखो सरकार क्या करती है।
2: अब हम बात करते हैं इस गांव से जुड़े स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में, तो पहले हम यहाँ के पंच से पूछना चाहेंगे कि इस गाँव में क्या क्या स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं।
4: नमस्कार जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं यहाँ का पंच हूँ जी। यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य सुविधा कोई नहीं है जी, यहाँ सिर्फ यहाँ से पहले भी जिस सरपंच साहब कह चुके हैं, यहाँ से सरकारी अस्पताल डेराबसी पड़ता है जी 40 किलोमीटर और हमारी तो सारी आबादी यहाँ की गांव की सिविल हॉस्पिटल पर ही डिपेंड करती है जी। यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी, यहाँ सिर्फ हरियाणा पर ही डिपेंड है जी।
2: इस बारे में सरपंच जी आपके क्या विचार?
3: जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर सरकार है, चाहे पंजाब सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है, सारी इसमें सौतेला व्यवहार कर रही हैं। एक तरफ तो सरकारें बोलती हैं भी एक देश कैसे हुआ, ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, मतलब सेंटर सरकार की स्कीम है, बोल रही है कि भी कहीं भी इलाज कराओ। और हम पंजाब में हैं, हमारे से नज़दीक पड़ता है हरियाणा का हॉस्पिटल, हम वहाँ जाते हैं, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं चलता वहाँ पे, तो हम कहाँ जाए करके बहुत मुश्किल है। और पंजाब सरकार आई है कि मतलब दिल्ली का मॉडल लेके आई थी कि यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर से इधर से कोई अब तक खुलिया नहीं है। मतलब लालडू अपना हॉस्पिटल एक छोटा सा यहाँ पे अंटाला में है, अंटाला भी 3-4 किलोमीटर है, वहाँ पूरे डॉक्टर नहीं अब तक है, कोई मरीज मतलब जाएगा तो उसको पूरी दवाई नहीं मिलेगी, फिर उसको हरियाणा में आना पड़ेगा, वो क्यों जाएगा वहाँ से उल्टे पास से।
2: तो आप हमारे रेडियो के माध्यम से दोनों सरकारों को और केंद्र तक क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं?
3: मैं तो ये संदेश क्या, हमारी तो प्रार्थना है सरकारों से, अभी गरीब माल ना करे, अमीर तो अपना इलाज करा लेगा, पैसे देकर कहीं भी करा लेगा, गरीब कहाँ जाएगा? जिसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है वो तो अपने घर बैठा बेफिक्र होगा, अभी मेरे पास तो कार्ड है और मेरा इलाज हो जाएगा। और जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ कुछ नहीं, वो कहाँ एट ए टाइम उस टाइम मरीज को संभाले या पैसा देखे, कहाँ क्या करेगा वो। मतलब मेरी तो यही है प्रार्थना की जो पंजाब का आयुष्मान कार्ड है वो हरियाणा में भी चले, यूपी में भी चले, दिल्ली में भी चले, जिससे अपना बीमार आदमी अपनी दवा पुट्टी करा सके।
2: आयुष्मान कार्ड के अलावा और क्या कोई सुविधा आप चाहते हैं सरकार के द्वारा आपको दी जाए?
3: अगर जैसे हम पंजाब में हैं, लास्ट गांव है, यहाँ से कोई डिस्पेंसरी खुल जाए जिससे मतलब फर्स्ट एड मिल जाए बंदे को, थोड़ा फिर मतलब राहत मिले आदमी, फिर अपना कहीं भी इलाज करा ले, ये मतलब छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुलना जरूरी है यहाँ पे।
2: जैसे इस वक्त हरियाणा में डेंगू के केस और पंजाब में डेंगू के केस ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो आपके इस वक्त आपके गांव में क्या स्थिति है?
3: बहुत ज्यादा बुरा हाल है, मतलब 100-150 मरीज पड़े होगा हॉस्पिटल में, और मैंने एक मतलब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को फोन भी किया है, ऐसे ऐसे करके मेरे गाँव में पड़े है मरीज, कोई मतलब स्प्रे करा दे या कोई दवाई का इंतजाम कर दे कुछ भी, मतलब अब तक तो कोई जवाब नहीं आया, ना कोई पूछ सुध लेने आया कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, वहीं बैठे रिपोर्टे दे देते हैं, सब ठीक है यहाँ पे।
2: आप इस समस्या से इस वक्त कैसे इसका समाधान निकाल रहे हैं खुद ही, और क्या क्या चीजें आपने अपनाई है?
3: समाधान तो कुछ नहीं है जी, यही अपना हरियाणा के हॉस्पिटलों में पड़े हैं बंदे, अपना इलाज करा रहे हैं, अपने मतलब पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना।
2: तो ये थे रजापुर गांव के सरपंच, जिनसे हमने बात करी और जाना किसानी के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। उम्मीद करते हैं इनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी और जल्द से जल्द इन्हें सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी।
5: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, रेडियो वितस्ता 90.0 FM से, और आज हम आधिकारिक रूप से आए हैं गाँव रजापुर में, जो तहसील डेरा बसी पंजाब राज्य में पड़ता है। ये गांव अंबाला कैंट जो हरियाणा में पड़ता है, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर हमने आज गांव के अलग अलग लोगों से बात की, जो अलग अलग उम्र के हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, और जो लोगों से हमने बातचीत की उससे हमें एक अलग ही एक तस्वीर सामने आई कि एक गाँव जो किसी राज्य के बॉर्डर पर है और दूसरे राज्य के नजदीक है, उन लोगों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको ऑफिशियली कोई काम करना पड़ता है तो उनको 35 किलोमीटर दूर या तो डेराबसी जाना पड़ता है या उनको 60 किलोमीटर दूर मोहाली जाना पड़ता है। जब ये लोग यहाँ पर अस्वस्थ होते हैं तो इनके लिए सबसे नजदीक हरियाणा में जो अंबाला कैंट के अंदर हॉस्पिटल है वो आता है, उनको वहां जाना पड़ता है, जो केवल 7 या 8 किलोमीटर दूर है। जहां तक हमने देखा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात हमने की, पंजाब सरकार की ओर से यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, यहाँ के लोग अपना ट्रांसपोर्ट यूज करके जो कोई इनको काम करना है, चाहे इनकी बच्चों की पढ़ाई है, चाहे इनका रहन सहन है, चाहे इनके लिए घरों के लिए सामान लाना है या जमींदारी के लिए कोई सामान लाना है, तो ये निर्भर पूरी तरह से हरियाणा राज्य के जिला अंबाला पर है। इन लोगों की बात हमने आज सुनी है, रिकॉर्ड की है। हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बात पंजाब सरकार तक देंगे, हरियाणा सरकार तक देंगे और केंद्रीय सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ एक जरिया है जिस जरिए के माध्यम से हम लोगों की बात बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं और सरकारों तक पहुंचाते हैं। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। जब बुजुर्ग कहते हैं कि आज से 70 साल पहले ये गांव वैसा ही था और एक युवा जो 30 या 35 साल का है वो भी यही कहता है कि आज भी गांव वैसा ही है, और उनका कहना है कि अगर हमारा बच्चे से कल आप पूछोगे 15 साल 20 साल के बाद वो भी यही बात कहेंगे, तो ऐसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सभी सरकारों से अनुरोध करते हैं कि इस गांव के बारे में सोचे, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज हमें इतना सारा समय दिया। आप सभी लोगों का रजापुर गांव से बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का।

0: 21 जुलाई सन 1930 को अनंत बख्शी का जन्म रावलपिंडी में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है।
1: जो इंसाफ को तोले।
0: बंटवारे के फौरन बाद आनंद बख्शी ने दिल्ली का रुख किया। आनंद बख्शी शायर तो थे ही, छोटी छोटी महफिलों में अपना ताजा कलाम पेश करने का उन्हें मौका मिलता रहता था। इसी दौरान आनंद बख्शी नौसेना में

0: सन 1957 एक फिल्म आई शेर बगदाद, जिसमें आनंद बख्शी को गीत लिखने का मौका मिला। सन 1958 में एक और फिल्म आई भला आदमी, के लिए आनंद बख्शी को फिर से गीत लिखने का एक और सुनहरी मौका मिला। सन 1962 में फिल्म आई काला समंदर, जिसके मौसिकार थे एन दत्ता। इस फिल्म के लिए आनंद बख्शी ने गीत लिखे। एक गीत शायद आपको याद होगा, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम,
1: मेरी तस्वीर लेकर क्या

सन 1962 में ही कल्याण जी आनंद जी के साथ आनंद बख्शी को काम करने का एक सुनहरी मौका मिला। फिल्म मेहंदी लगी मेरे

हिमालय की गोद में मिलन आसरा, आए दिन बहार के अनीता, फर्ज देवर चंदन का पालना, आमने सामने राजा और रंग, आया सावन झूम के जीने की राह, दो रास्ते आराधना और बेशुमार फिल्मों के लिए गीत लिखकर आनंद बख्शी, कामयाब गीतकारों में शुमार होने लगे।

में अनिल बख्शी की यादगार फिल्मों में फिल्म अब्दुल्ला, आशा, कर्ज, लव स्टोरी, शक्ति, विधाता, अर्पण, कुल्ली, देश प्रेमी, हीरो, नगीना, मेरी जंग, कलमा, राम लखन, चांदनी, त्रिदेव और भी बहुत सारी फिल्मों के लिए आनंद बख्शी साहब ने गीत लिखे।

के बाद आलू बख्शी साहब ने अपने काम में काफी कटौती करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी फिल्म आवारगी, डर, विश्वात्मा, हम, मोहरा, बंजारन, खलनायक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, हीर रांझा, दुश्मन दिल तो पागल है, ताल और लम्हे जैसी फिल्मों के साथ उस युग के सबसे कामयाब गीतकार आनंद बख्शी साबित हुए।

0: आनंद बख्शी साहब ने अपने काम को जारी रखते हुए फिल्म जख्म, गदर एक प्रेम कथा, अशोका और यादें इन फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। कुल मिलाकर गीतकार आनंद बख्शी ने 638 फिल्मों के लिए लगभग 4000 गाने लिखे।
1: चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था।
0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, अलका याग्निक, उदित नारायण, कुमार सानू और सोनू निगम के अलावा कई गुलकारों की आवाज में आनंद बख्शी के गीत सदाबंद

दोस्तों बताया जा रहा है आनंद बख्शी 37 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए, जो अपने आप में एक खूबसूरत रिकॉर्ड है। आनंद बख्शी का विवाह कमला मोहन बख्शी से हुआ था। उनकी दो बेटियां सुमन दत्त और कविता बाली और दो बेटे राजेश बख्शी, राकेश बख्शी थे।

30 मार्च सन 2002 मुंबई के नानावती अस्पताल में 71 साल की उम्र में आनंद बख्शी साहब ने इस दुनियाई फानी को अलविदा कहा। आनंद बख्शी साहब जैसे अजीम गीतकार कभी मरते नहीं हैं, वो अमर रहते हैं।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर,
4: सही रास्ता सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
5: ग्रेड नेट A++, CGPA 3.72।
4: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
5: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
4: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
5: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
4: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
5: www.sdcollegeambala.ac.in।
6: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किदी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट, निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता RJ किरने। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

नमस्कार दोस्तों, जिंदगी के इस रंगमंच पर हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है और हर कहानी के बीच कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें सोचने, महसूस करने और जीने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ खास पल जिनमें है बात, जज्बात और एक नया नजरिया। मैं हूं किरणी और पेश है कार्यक्रम रेडियो पॉडकास्ट विद किरणी। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज का टॉपिक है स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल करने से गर्दन टेढ़ी हो सकती है। स्मार्टफोन से गर्दन टेढ़ी, 60 डिग्री झुकने से 27 किलोग्राम तक बोझ पड़ता है। हो रहा असहनीय दर्द, जब सिर को झुकाते जाते हैं तो गर्दन व रीढ़ पर भार बढ़ता जाता है। स्मार्टफोन की लत आंखों या मानसिक तनाव तक सीमित नहीं रही, ये पूरे शरीर पर असर डाल रही है, खासतौर से गर्दन व रीढ़ पर। लुधियाना के प्रमुख अस्पतालों में हर माह 300 से ज्यादा मरीज स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल के कारण पहुंच रहे हैं। गर्दन में असहनीय दर्द, अकड़न, मांसपेशियों में खिंचाव व नसों पर दबाव जैसी समस्याएं आम हो रही है। इन मरीजों में 6 साल के बच्चे से 70 साल तक के बुजुर्ग शामिल है। बच्चों में ये आदत पढ़ाई व गेमिंग के बहाने आती है। बुजुर्गों में ये सोशल मीडिया, न्यूज जानने की चाह में आ रही है। समय रहते स्क्रीन टाइम घटा ले, वरना आखिरी विकल्प गर्दन की सर्जरी है। टेक्स्ट नेक क्या है? जब लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन पर झुके रहते हैं तो गर्दन और रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों पर तनाव बढ़ता है, फिर दर्द और अकड़न होती है। इससे रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों पर स्थायी असर पड़ता है। ये अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करती है, कंधों पर भी असर पड़ता है। सिर दर्द, हाथ सुन्न होना, मांसपेशियों में खिंचाव व मानसिक तनाव हो सकता है। मोबाइल पर झुककर देखने से आंखों पर भी असर पड़ता है, जिसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। स्मार्टफोन का उपयोग करते समय अपनी गर्दन को सीधा रखें और स्क्रीन को आंखों के सत्र पर लाएं। हर दिशा में ऊपर नीचे, बाएं और दाएं अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें। नियमित रूप से ब्रेक लें और अपनी गर्दन को हिलाएं। एक मजबूत कोर और अच्छी मुद्रा बनाए रखें। यदि आपको दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लें। उपचार, हल्के मामलों में आराम, स्ट्रेचिंग और मुद्रा में सुधार से राहत मिल सकता है। गंभीर मामलों में शारीरिक चिकित्सा, दवाइयां या सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, कहानियां खत्म होती है लेकिन उनके जज्बात हमारे साथ रहते हैं। उम्मीद है कि आज की बातें आपके दिल तक जरूर पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए रंग, एक नए सुर और एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in। تُہ چھو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہوں۔
2: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
3: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
2: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
3: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
2: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेव या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवा की ये श्रृंखला।
4: नमस्कार, ललदेद हुंद युसी वाक उते वनन वोल्सो, ये बहुत ही क्रांतिपूर्ण और बहुत ही परिवर्तनशील ललवाक है। ललदेच वनन गोरन वन्नम कुने वचुन, नेब्राय दोपनम अंदरे अचुन, सुई गो लली में वाक त वचुन, तवे हुतुम नंगे नचु। यानी गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसके कारण से मैं बाहर से अंदर आई और वही अंदर आना मेरे लिए एक क्रांति का सबब बन गया और इसलिए लला अब एक नग्न रूप में नाच रही है। इस वाक को समझना बहुत जरूरी है। गुरु ने ऐसा क्या शब्द कहा? हमारी संस्कृति में एक शब्द ब्रह्म है जो अपने में ही एक पूरा ब्रह्मांड हम मानते हैं, और ललदेत को गुरु ने कुछ ऐसा शब्द कहा जिससे ललित के जीवन में बाहर और अंदर एक क्रांति खड़ी हो गई। जो लला बाहर थी वो लला अंदर चली गई, और जो अंदर चली तो उसे एक नई ही दुनिया दिखाई दी। यानी वो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जब मुड़ी तो एक क्रांति उसके अंदर घटी। और यही लला कहती है, तवई है तुम नंगई नसुन, यानी इसलिए वो नग्न अवस्था में नाचने लगी। ये नग्न अवस्था कपड़े उतरे हुए नग्न अवस्था नहीं, ये वो नग्न अवस्था है जहां पे हम सारे फसाद, जिसके कारण से हम अंदर की दुनिया को छिपा के रखते हैं और बाहर की दुनिया में कुछ और दिखाते हैं, ये उस फसाद को तोड़ने की बात कर रही है। वो कह रही है, मैंने वो सारी कंडीशन, सारे परसेप्शन, सारे बिलीफ, सारे आइडिया, सारे थॉट्स, सारे ऐसे जो जजमेंट्स उसके मन में थे, जिसके कारण से एक आम आदमी दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उसे वो सारे कंडीशंस छोड़ दिए और एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जो विचारहीन, विचारलेस, थॉटलेस स्टेट है। और उस थॉटलेस स्टेट से उसे वो परमात्मा दिखाई दिया, उसे वो शिव दिखाई दिया। कितनी गहरी बात ललित हमें इस वाक से कहती है। मैं नीरजा जी से कहूंगा कि तो ये विद तो यह वाक पन्य हाइट तो यूजन लुक बोझन कि अथ वाकस मस्त कित पर सरस्वती हैकान अस्ताम वित।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम पेश है। मुझे तू दर्द दे ऐसा जो तुझे भी मिल गया हो, मुझे तू फूल दे ऐसा जो मुरझा के खिल गया हो, मुझे तू दिल भी दे ऐसा जो अब तक सिल गया हो। मैं हूं रमेश

एक सन्नाटा है जो मेरी उम्र के सिमटे हुए पलों की रहनुमाई करता है। तुम्हें ने तो सिखाया है चिराग बुझाने का तरीका भी। तुमने ये भी कहा था कि खुदा भी अंधेरों में सफर करते हैं, इसलिए एक सन्नाटा रखा है मैंने अपने आसपास।

अभी तक मुझको वो कहां भूले हैं। हम तो झूले हैं कितनी बहारों में, चिनारों में, सितारों में, जब कभी सफर होता था हमारा, और अपनी अपनी पसंद का तोड़ लेती थी सितारा। अभी तक गुलाबों के पत्ते हैं किताबों में, एक राज की तरह है तू मेरे हमराजों।

0: कहां गई वो रातें, प्यार भरे नगमे, मासूमियत की बातें। सब कुछ बदल बदल सा गया है, मगर मेरा तस्वुर, मेरे ख्यालात, मेरे जज्बात खामोश तनहा ठहराव लिए। इन फिजाओं में तेरा मेरी राहों का तकना फिर से मजबूर करता है जीने को। आखिर क्यों? इसलिए शायद कि हम और गम के तूफान में बह जाएं और तड़पें, गुट गुट कर दम तोड़ दे।
1: बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम।

कि एक फासला है किनारे से किनारे तक, नजर से नजर तक, सांस से सांस तक। एक सफर है आवाज से आवाज तक, खाक से खाक तक, मौत से मौत तक। ए दोस्त, ये फासले, ये शर्तें, ये सफर रहने दो।

तेरा, मगर तूफान में चिराग रोशन कैसे हो? अंधेरों से रोशनी की उम्मीद, आखिर जिंदगी का हासिल क्या है? कुछ भी तो नहीं दे पाऊंगा तुम्हें, इसलिए तू

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसे लगा? अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विद स्टार, हम सफर जिंदगी का।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 6 और आज के एपिसोड का शीर्षक है जज्बात। इस कार्यक्रम को लिखा और प्रस्तुत करेंगे RJ किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, निर्देशन भारत सोपोरी का।
5: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। स्वागत है आपका एक खास सफर में, जहां अल्फाज और सुर मिलकर दिल के जज्बात को बेहतरीन तरीके से बयां करेंगे। ये है रेट्रो का आज का अंक जज्बात स्पेशल। जज्बात वो तोहफे हैं जो हमें इंसान बनाते हैं और वो धड़कन जो इन जज्बात को और गहराई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये जज्बात भरा सफर। जज्बात दिल के लिख रही हूँ, कागज पे खुद को रख रही हूँ।

ये जज्बात ही है जो हमारी जिंदगी को गहराई देते हैं। तो दोस्तों, जज्बात का ये सफर यही आकर अपने अंजाम पर पहुंचा। जज्बात हमेशा जिंदा रखने चाहिए, क्योंकि ये वही जज्बात है जो जिंदगी के मायने देते हैं।

आपके साथ मिला तो ये सफर और भी खास हो गया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एहसास नए जज्बात के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार, और सुनते रहे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्तर।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 6। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था जज्बात। इस कार्यक्रम को लिखा और प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2, प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपुरी, लेके आया हूं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2, जहां बात करेंगे दोस्ती की, समर्पण की। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे के साथ खुशियां और दुखों को साझा करना। दोस्त वो है, एकदम वो भी ऐसे ही होता है

दोस्त हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होता है। जब दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जब भी जिंदगी में सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है तो हमारे अनमोल दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं और अपने अनुभव साझा कर एक यादगार बनाते हैं जिसको हम जीवन भर संजो के रखते हैं।

ऐसा शायद ही कोई होगा जिसका दोस्त ना हो, जो दोस्त की अहमियत ना जानता हो। हमारी जिंदगी में ज्यादा दोस्त ना हो पर कम से कम एक दोस्त जरूर होता है, और उनके साथ समय बिताना किसको अच्छा नहीं लगता। खासकर बचपन की दोस्ती तो बहुत गहरी होती है, जिनकी यादें सदा के लिए मन में बस जाती हैं।

ऐसा नहीं कि मित्रता बनावटी नहीं होती, पर जहाँ बनावटी मित्रता की जाती है वो स्वार्थ से भरी होती है। कोई भी संकट आए तो सच्चा मित्र ही उस मुश्किल घड़ी में साथ देता है, सारे कष्टों को दूर करता है। प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने अपने एक सुंदर दोहे में कहा है, आगे के मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई, जाकर चित आहे गति संभाई, उस कुमित्र परिहे रहनी बलाई। अर्थात जो आपके सामने मीठा मीठा बोलता है और मन में बुराई रखता है, आपका बुरा चाहता है, तथा जिसका मन सांप के चाल सम्मान टेढ़ा है, ऐसे मित्रों को छोड़ देने में ही भलाई है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 2 भारत सोपुरी के साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ चाहता है, आइए इस चर्चा के साथ करते हैं समापन इस कार्यक्रम का। सच्ची दोस्ती अनमोल होती है और मानव जीवन में इसका अत्यधिक महत्व होता है। मित्र सबके लिए निसंदेह रूप से एक आशीर्वाद है जो ऊपर वाला प्रदान करता है। एक सच्चे दोस्त होने से बेहतर कुछ भी नहीं, जिसके साथ आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा कर सकते हैं और कभी भी जरूरत होने पर उसका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन को अर्थ देता है और हमारी जिंदगी को सरल और खुशहाल बना देता है। इसी अच्छे विचार के साथ करता हूं समापन आज के इस कार्यक्रम का। आप अपना फीडबैक इस कार्यक्रम के बारे में दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। जल्द और किसी प्रोग्राम में भेंट करेंगे, तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

सुन रहे थे कार्यक्रम दोस्ती अनमोल, एपिसोड 2। एडिटिंग दीपक कश्यप, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं भरत सोपोरी और आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। कुछ क्षणों में शुरू होने जा रहा है आज के मन की बात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई मन की बात का 134वां संस्करण आप सुनेंगे 11 बजे से लाइव आकाशवाणी नई दिल्ली से। कुछ क्षणों में शुरू होने जा रहा है 134वां संस्करण मन की बात का। तब तक आप सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया, एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ, एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया, एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है, एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ, और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे, तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। तो जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, कभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक है, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
0: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
3: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
1: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
1: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
3: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
3: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी

छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर हैं, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था,

उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

बेकरार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन

0: साथ चलन की तैयारी कर ले,
1: धर ले।
0: अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत। सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी।
1: सही रास्ता सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
4: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
3: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
4: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
3: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
5: आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। गर्मी में मधुमक्खियों का बढ़ जाता है मोमी कीड़े का प्रकोप, रोकने के लिए विशेष जाली लगाएं। मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक प्रबंधन से शहद का उत्पादन बढ़ा सकते हैं किसान। मधुमक्खी पालन एक बेहद संवेदनशील और मुनाफे का व्यवसाय है, ऐसे में मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों के लिए मई और जून का महीना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। डॉक्टर कमल सैनी DHO ने बताया कि गर्मियों के इन कठिन दिनों में अतिरिक्त ध्यान और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाकर किसान न केवल अपनी मधुमक्खियों को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उत्तम गुणवत्ता वाले शहद का बंपर उत्पादन लेकर अपनी आय को भी दुगना कर सकते हैं। गर्मियों में यदि मधुमक्खियों के पक्षों का सही प्रबंधन ना किया जाए तो ना केवल मक्खियों के भागने या मरने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि शहद के उत्पादन में भी भारी गिरावट आ जाती है। गर्मी में मोमी कीड़ा, वैक्स मॉथ और पीली ततैया का हमला बढ़ जाता है। बक्सों की नियमित सफाई करें और प्रवेश द्वार पर ततैया को रोकने के लिए जाली का उपयोग करें। पक्षों का तापमान नियंत्रित रखने के लिए छायादार स्थानों का चयन करें। मधुमक्खियों के बक्सों को कभी भी सीधे धूप में ना रखें। इन्हें पेड़ों की घनी छाया के नीचे स्थापित करें। यदि छायादार पेड़ ना हो तो बक्सों के ऊपर पुआल, पराली या हरी नेट, ग्रीन शेड नेट डालकर कृत्रिम छाया का प्रबंधन अवश्य करें। गर्मी में बक्सों के ऊपर जूट की बोरियां टाट डाल दें और उन पर दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करें। इससे बक्से के भीतर का तापमान नियंत्रित रहेगा और मक्खियां शांत रहेंगी। गर्मियों में मक्खियों के छत्ते को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यदि पानी दूर होगा तो मक्खियों की ऊर्जा सिर्फ पानी लाने में ही नष्ट हो जाएगी। बक्सों के बिल्कुल नजदीक लगभग 10 से 20 मीटर के दायरे में साफ और ठंडे पानी के बर्तनों की व्यवस्था करें। पानी के बर्तनों में सूखी लकड़ी के टुकड़े, जूट की रस्सी या कंकड़ पत्थर डाल दें ताकि पानी पीते समय मधुमक्खियां डूबकर ना मरें। चाशनी बनाकर बॉक्स के अंदर रखें। इन दिनों में प्राकृतिक रूप से फूलों की कमी हो जाती है, जिससे मक्खियों को पर्याप्त मकरंद, नेक्टर और पराग पॉलन नहीं मिल पाता। इस कमी को पूरा करने के लिए चीनी और पानी को 1:1 के अनुपात में घोल चाशनी बनाकर पक्षों के भीतर फीडर में रखें। ध्यान रहे घोल शाम के समय ही रखें ताकि अन्य बाहरी मक्खियां या चींटियां आकर्षित ना हो। सूरजमुखी व औषधीय पौधों के पास रखें बॉक्स। फ्लोरा फूलों वाले क्षेत्र की मैपिंग शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए बक्सों को ऐसी जगहों के पास रखें जहां सूरजमुखी, मक्का, हरा चारा या औषधीय पौधे हों। रानी मक्खी की देखभाल। बक्से में रानी मक्खी का सक्रिय होना सबसे जरूरी है। यदि रानी मक्खी बूढ़ी हो चुकी है तो उसे नई और ऊर्जावान रानी मक्खी से बदलें ताकि अंडों का उत्पादन सही रहे और कॉलोनी में कामगार मक्खियों की संख्या कम न हो। वीडियो देखकर जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। गोबर और गौमूत्र से तैयार की खाद 10 एकड़ में सालाना कमा रहे 10 लाख रुपए। किसान संदीप ने प्याज, धनिया, गोभी, तोरी और घिया के खुद के बीज तैयार किए। हिसार के गांव चूली देसावली के किसान संदीप कुमार करीब 20 साल से परंपरागत खेती कर रहे थे। गांव में गेहूं, कपास, ग्वार, सरसों आदि का फसल चक्र ज्यादा चलता है। इनमें खाद व फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के कारण खेती में ज्यादा बचत नहीं निकल रही थी। करीब 8 साल पहले संदीप ने YouTube पर रोहतक के प्रगतिशील किसान राम सिंह का वीडियो देखा, जिसमें वे ऑर्गेनिक तरीके से खेती के टिप्स बता रहे थे। यहीं से संदीप ने भी ऑर्गेनिक खेती करने की ठानी। 10 एकड़ के फॉर्म में शुरुआत में आधा एकड़ जमीन पर सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती शुरू की। राम सिंह से मोबाइल पर बात करके टिप्स लेते और सब्जियों में उसी तरीके से खाद देते। इसके बाद कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत के गुरुकुल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ली। अब संदीप अपने 10 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। करीब 10 लाख रुपए की आमदनी सालाना हो रही है। संदीप बताते हैं कि गोबर और गौमूत्र की खाद तैयार करके सिर्फ इसी खाद का प्रयोग वे खेत में कर रहे हैं। यह खाद भी सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर सब्जियों की फसल को देते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त करते हैं। मंडी में भी अब उनके खेत की ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर किसानों को कर रहे जागरूक। संदीप ने बताया कि वे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जागरूक कर रहे हैं, साथ उनको फेसबुक के जरिए टिप्स देते हैं। किसान उनके खेत में आकर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे किसानों को सब्जियों के कल्चर भी मुफ्त देते हैं, जिसमें कंपोस्टिंग, फंगस व जीवाणु होते हैं। संदीप बताते हैं कि उसने अब तक प्याज, धनिया, गोभी, तोरी और घिया जैसी फसलों के खुद के बीज तैयार किए हैं। इनके जरिए ही वे अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। प्याज के 2 वैरायटी तैयार की है। इसमें एक फगवा रंग का प्याज है, इस वैरायटी का नाम M1 रखा है। दूसरी वैरायटी का प्याज पूरी तरह से सफेद रंग का देसी प्याज है। इसी तरह अन्य सब्जियों के बीज खुद के खेत में ही तैयार करते हैं। बीज व खाद का खर्च न होने पर खेती का खर्च भी कम हुआ है। गन्ने की फसल में हो सकता है काली कीड़ी और पोका बोइंग का आक्रमण। फसल पड़ जाती है पीली, ऐसा होने पर बचाव के करें उपाय। गन्ने की फसल में काली कीड़ी और पोका बोइंग रोग का आक्रमण हो सकता है। इन कीट का नियंत्रण जरूरी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PR काम्बोज ने बताया कि 400 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। छिड़काव घोव पर करें ताकि दिन के समय ब्लैक बग बच्चे या प्रॉड नष्ट हो जाएं। कभी कभी अष्टपदी माइट का आक्रमण होने से पत्तों पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके लिए 600 मिलीलीटर रोगो 30 ईसी को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। गन्ने की फसल में गर्मियों में 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण को एंट्रोजेन 50 घुलनशील पदार्थ 1.6 kg प्रति एकड़ का छिड़काव 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर करें। चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के लिए 2-4 dl सोडियम सॉल्ट 1.0 किलो प्रति ग्राम प्रति एकड़ की दर से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव बिजाई के 3 सप्ताह बाद करें। गन्ने की बीजू या नौलफ फसल में इस माह के अंत तक नाइट्रोजन वाली खाद की दूसरी मात्रा 45 केजी यूरिया प्रति एकड़ खेत से घास फूस निकालकर छिट्टे द्वारा डालें और ऊपर से हल्की सिंचाई करें। मोड़ी फसल में उपयुक्त खादों की 1.5 गुनी मात्रा का प्रयोग करें। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, उन्नत रहें, आबाद रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
3: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
4: क्या बताऊं? मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
3: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
4: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
3: अभी कॉल करें 7056413010, 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
5: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
6: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
6: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
6: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
6: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: कवच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेरी निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिनभर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेट A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ है

0: डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक्स है, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: जी।
1: तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेड ब्लड डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है, क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात को रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर रहता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनुरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन, एटलीस्ट 4-5 times अ डे, अ वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफ स्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाई की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सब से एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये है आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मींस ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी इसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
3: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
2: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
3: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
2: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। कुछ दुनिया सिर्फ कान नहीं सुनते, दिल महसूस करते हैं। कुछ गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, वो यादें बन जाते हैं। और कुछ फनकार जैसे वक्त के उस मोड़ पर मिलते हैं जहां हर सुर एक कहानी बन जाती है। पेश है कार्यक्रम सरगम। आज के सरगम समर्पित है एक ऐसे ही संगीतकार को जिन्होंने बॉलीवुड के संगीत में ताल का जादू बिखेरा, ओपी नायर। आए चलिए मेरे साथ एक ऐसे गीतों की दुनिया में जहां नायर साहब के सुर, गीतकारों के बोल और गायकों के जज्बात मिलकर बनाते हैं संगीत का एक रंगीन जादूगर सफर सरगम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं CID फिल्म के गाने से, जिसके गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, गायक रफी, आशा भोसले और शमशाद बेगम, संगीत ओपी नायर।

अब पेश है गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का गाना, जिसे गाया है गीता दत्त ने, संगीत ओपी नायर का और फिल्म का नाम है हावड़ा ब्रिज।

अपेश है ओपी नायर का संगीतबद्ध गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने। फिल्म सीआईडी से और उसके गीतकार है जान निसार अख्तर।

0: अगली पेशकश है गीतकार साहिर लुधियानवी का गाना, जिसे गाया है रफी और आशा भोसले ने, संगीत ओपी नायर और फिल्म है तुम सा नहीं देखा।
1: देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हम

बेश रफी और आशा की आवाज में एक देसी रंग, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नायर। फिल्म का नाम है नया दौर।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, आपकी जिंदगी की रवानी। जारी है कार्यक्रम सरगम। लीजिए पेश है कश्मीर की गली का गाना, गायक रफी और आशा भोसले, संगीत दिया है ओपी नायर ने और इसके गीतकार है SH बिहारी।

0: आप सबकी नजर फिल्म संबंध का गाना, जिसके गीतकार है नूर देवासी, गायक रफी और संगीत दिया है ओपी नायर ने।
1: रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं

सभी श्रोताओं की नज़र एस एस बिहारी का लिखा गाना जिसका संगीत दिया है ओपी नायर ने, गाया आशा भोसले और शमशाद बेगम ने, फिल्म किस्मत से।

लीजिए आप सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का गाना फिल्म मेरे सनम से, संगीत

अब पेश है इस कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म माया से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, इसका म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने और इसके बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

आज के सरगम में हमने सिर्फ गाने नहीं सुने, हमने एक ऐसे फनकार के जज्बात महसूस किए जो ताल से मोहब्बत करता था और धुन से रिश्ता निभाता था। इसके साथ ही सरगम कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सरगम के संग। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 10, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: कभी तो हंसाए।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
3: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

राधा नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ बने रहेंगे। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रमेश मराठा। तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे। मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख के रखा है।

तुझे अपने साथ ले जाता पत्थरों के शहर में, जहां बरसों पहले मैंने तराशे थे। बोलते मुजस्सम और पत्थरों के खुदा, जिनकी इबादत में हर कोई है मसरूफ, और उठते ही सदा

दौड़ता था, भागता था, मस्ता था, पेड़ों की टहनियों से झूला झूलता था। बारिश की बूंदों को अपनी कच्ची मुट्ठी में कैद करता था। सिर्फ एक बार लौटा दे मुझे मेरा बचपन, जो गलतियां हुई अब उनको न दोहराऊंगा, किसी से न रूठ जाऊंगा, किसी को न रूठने दूंगा, किसी से न शिकवा करूंगा और न किसी को शिकायत का मौका दूंगा। मगर मुझे लौटा दो मेरा बचपन, तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में पायल, तुम्हारे नीले दुपट्टे के छांव तले गुनगुनाना चाहूंगा। तुम ही को फिर से संवारना सजाना चाहूंगा, तुम्हारी हथेली में मेहंदी, आंखों में काजल, पांव में पायल, तुम्हारे नीले दुपट्टे के छांव तले गुनगुनाना चाहूंगा। सिर्फ लौटा दो मुझे मेरा बचपन, मुझे मेरा अतीत, मेरा बीता।

किसकी सूरत अब इस शीशे में उतारूं। टूट गया आईना, टुकड़े टुकड़े हो गया, जुबां बंद हो गई।

नजर खामोश, चारों ओर पसरा है सन्नाटा। शायद फरामोश करना तुम्हारी आदत है, यूं ही पल पल

भीगते रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं, दूर से ही सही तुम्हें निहारता रहूं। चांद भी इन बादलों से चीर के निकल आया है तुम्हें अपनी आगोश में लेने के लिए। गरजते बरसते ये बादल, ये हवाएं तुम्हारे गेसों, तुम्हारे रुखसार को छूने में हैं मुंतजर। चले आओ अपनी मुस्कुराहटों के संग, यहां खेले लुक्का छुपी और मुस्कुराए इन फिजाओं के साथ।

0: बोलिए, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्ते।
1: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है पूरे 9 बजे। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहा होगा। आज के जो हमारी कहानियां, जो प्रोग्राम थे, वो आपको पसंद आए होंगे और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने आपकी जिंदगी के आज के दिन को बहुत ही अच्छा बनाया होगा, बहुत ही खुशनुमा बनाया होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 1 जून 2026 सोमवार, यानी कल से नया महीना शुरू हो रहा है जून का। और आप सभी को ये जरूर कहना चाहूंगा, आने वाले दिन गर्मियों के हैं और गर्मियों में अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखें, घर परिवार का भी ध्यान रखें। अगर गर्मी में बाहर निकलें तो आप अपना मुंह और अपना सिर ढक के जाएं। अभी तो 2-3 दिन से मौसम सुहाना है और अच्छा है, पर आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और आप लोगों को और बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसा हमने समाचार पत्रों से सुना है और पढ़ा भी है कि अस्पतालों में आज के दिन, इन दिनों मरीजों की बहुत तात हो रही है। तो अपना ध्यान रखें, सेफ्टी में ही बचाव है, और अपना ध्यान रखें और अपना ख्याल भी रखें। कल 1 जून 2026 सोमवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करते हैं शुरुआत और लाएंगे आपके लिए प्रकाश प्रवाह। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत और 7:05 पर सोमवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कल हम आपके लिए लाएंगे चर्चा जो हमने की है डॉक्टर शिल्पी शर्मा के साथ, जो आयुर्वेदाचार्य है। आपने पहले भी यह कार्यक्रम सुना होगा, कल इसका पुनः प्रसारण होगा 7:05 पर। 8:30 आप सुनेंगे सकारात्मक कहानियां एपिसोड 4 और ममता माँ की होगा शीर्षक, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 आप सुनेंगे बच्चों की बात, श्री विद्या निकेतन स्कूल के बच्चों के साथ की गई बातचीत, पेश करेंगे आरजे सेजल। और 10:10 पर होगा कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 1, पेश करेंगे नरेश शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एपिसोड 6 सरगम का, पेश करेंगे आरजे किरणी, जिसमें आप बहुत ही पुराने नगमे आप सुनते हैं। 8:30 कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा और कल की कड़ी है मुझे ले चलो। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारे स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देंगे और बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करेंगे। और सुनते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।